गौड़ी गौरे री महला ती जायक गावत रहे मान शांत साधन पाई होम विच गावे विरसा जर जाई गावहे गावन गावहे जिन नाम प्यार साची बाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे एक भगत करे नाम न पावे बिन सुनहि सची भगत गुर शब्द प्यार अपनी अपना पर राख्या सदा उतारू भगत करहे मूर्ख आपक जनावे नाच नाच टपे बहुत दुख पावे नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए सब भगत वसल भगत।

साचे नाम की तलवड़याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकर आखण पाहे, वड्डा न होवे घाट न जाए। ना ओ मरे न होवे सोग, देंदा रहे न चुके भोग।

तन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल

चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ द मुझे उभरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है।

संशयमहै तरो ब्रह्म ज्ञानी विषय जगाहि पियावहि रस अकथ कथा जन जानी जाको आय सोई विहाज हो हर गुरु ते मन बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहोर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख।

अंतरयामी पुरख बिधाते शरदा मन के पूरे नानक दास है सुख मांगे मोक कारो संतन की तूरे अंतरयामी पुरख बिधाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोक कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा।

सतगुरां ने इन्ना प्यार दिता, वह क्यों ना अपना आप कुर्बान कर दिता। महा सिंह नू पईयां लानता घरों, सवेर हुई सत च हो गए कट्ठे, जिवें अपने पिंडां च परोठे हुंदे ने उन्हां थले कट्ठे नहीं हुंदे सारे। जिहड़ी गल खबर किते ना पहुंचे सब तो पहला उन्हां कोल पहुंच जांदी है। श्री वाहिगुरू, जिहड़े परोठे थले बहिंदे ने ना, जिहड़ी ट्रिब्यून विच भी खबर नहीं छपदी, किसी अखबार च नहीं छपदी, उन्हां कोल पहला पहुंच जांदी। उन्हां दा पता नहीं किथे कनेक्शन जुड़े जांदा, सब दुनिया दीआं खबरां उन्हां कोल सुण लो। बस उन्हां ने कदी किसे दी गल, कदी किसे दी, कदी किसे दी, बस यही काम है। साध संग जी कट्ठे हो गए सारे सवेर वेले, वो तेरे नाल किदां बणी कुछ ना पुछ, तेरे नाल बुरा ही हाल होया, वो तेरे नाल पानी भी नहीं पुछया किसे ने। सारे जने कट्ठे हो गए, चेहरे उतरे हुए ने, किसे ने भी उन्हां दा सत्कार ना किया, क्योंकि सारा पिंड ही मारना जुड़िया होया। अजे बैठे ही ने, आ गई भी उधरों माई भागो नाल, नाल बीबिया का जथा ले फिरे, उहदे नाल 35-40 बीबिया जथा लैके आ गई। उन्हें आके एक फलकारी ते चूड़िया का गुच्छा भगा के मारिया इन्हां दे विचाले, ये बैठे सारे जने। भैण आ गई है, वो कहिंदे हत्थां च चूड़ियां पालो, सिरां ते लै लो चुन्नियां, घर का कम कार तुसीं संभालो, जंग विच असीं चलीआं। हुण डरदे हो ना तुसीं मौत तों, वेखिओ वी घर बहि जाओ, सिरां ते चुन्नियां लै लो, असीं मैदाने जंग विच जावांगीआं, जूझ के झीटियां पावांगीआं, जिहड़ा कलंक तुसीं ला के आयो असीं धो के आवांगे। महान कुर्बानी है बीबिया की। लो भाई बेनती है, पांच प्यारे आउणगे खड़े ना होयो, इवें जिवें बैठे रहना है। सारी संगत ने महाराज जी का सत्कार करना है, पांच प्यारे ने अपने कोल आना स्टेज ते, हुण उठो ना, ये गल शोभा नहीं पाउणी जे खड़े होयोगे, प्यार नाल बह के दर्शन करियो, बाकी राह जिहड़ा वो छड्ड दिओ। पांच प्यारे आउणगे ते संगत ने बहना नहीं, उन्हां वास्ते भी थोड़ी जगह करो भाई, थोड़े थोड़े ना बीबियां थोड़ा जा परे नू ते भाई ऐ नू हो जाओ, थोड़े थोड़े आप ही बेनती मान लो भी जिहड़ी संगत अमृत छक के आए आपां उहनां दा सत्कार ते कर लईए, जिहड़े अमृत छक के आए ने उहनां नू बहिण वास्ते जगह दे दिओ, सारे अपने आप थोड़े थोड़े खिसक जाओ, वीर भरा इंज नू हो जाओ, बीबियां थोड़ा जा परे खड़े ना होयो, कोई ये बेनती जरूर प्रवान करो।

दाती मिल संगत हर गुण गाय रसना अगह गुण राती नैन दर्स रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए सबहु तले तले सब ऊपर ए दृष्ट दृष्टाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वछल कृपाए जो जो सरन परे ओ गुर नानक अपै दान सुख पाए बुलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है नमस्कार दंडौत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझह चितारै सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरा परिवार है जो तुम करो सोई भल हमरे पेख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण मोह मगन पत

काम क्रोध लोभ रात निंदा सात संतोख बदारन इनते काढ ले हो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन नानक की बेनंती प्रभ पह साध संग रंक तारन बलावल महला पंजवा संतन कह सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन पूर रही दिनस अर रात रहाओ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात तृप्त अगाहे पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे सरन सुख दाती गुर कै बचन जपे हर जाप सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकुर प्रताप बलावल महला पंजवा ताप लाया गुर सिरजन हार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार रहाओ कर मस्तक धार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखै मेहरवान गुरु नानक बोले दरगाह परवान राग बलावल महला पंजवा चौपदी दोपदी कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन सेव अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा रहाउ बिस्मन बिस्म पय जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पय उहा संग माते पोत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा

सूचा अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा बिलावल महला पंजवा बिन हर काम न आवत ही जा स्यो राच माच तुम लागे ओह मोहनी महावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिनह मैं जावत हे उर्ज रहे इंद्रिय।

ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत ही पंच दूत मूंद पर ठाडी केस गहे फेरावत ही दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत ही जान पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यों फहावत ही कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत ही बिलावल महला पंजवां हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवों जैसे पान तंबोली रहाऊ सहज समायो गुरह बतायु रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन आत्मी की मेरी बनी खटोली बलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाउ पूर्ण पूर रहो संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कौ सगली सोज पई बलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारी वर्ण ना साकह एक रुमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदरा बे अंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथी है किस कथन ना जाई जह जह देखा तह रहया समाई रहाउ जह महाभयान दुख जम सुनिए तह मेरे प्रभ तू है सहाई शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक कौ बूझ बुझाई बलावल महला पंजवा अगम रूप अबनासी करता पतत पवित एक निमुख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेटले संत चरण चरण मन लाई है कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाऊ जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाई है नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है बलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी धंद बंद अर सगल जंजारू अवर काज ते छूट परी रहाऊ सूख सहज अर कनो अनंदा गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बन ना साको गुर पूरै मेरी उल्ट धरी देखियो मोहन सब कह संगे ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहो कृपा निद कहो नानक मेरी पूरी परी बलावल महला पंजवा मन क्या कहता हों क्या कहता जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहाउ अनबोले को तू ही पछान है जो जीन मह होता रे मन काए कहां लो डह कह जो पेखत ही संग सुनता ऐसो जान भये मन आनंद आन ना बियो करता कहो नानक गुरु।

परम गबार मोह बंद परी कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढै बाहां परी बिलावल महला पंजवां मन तन रसना हर कीना भय आनंदा मिटे अंदेसे सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाओ ज्ञानप ते सब भई सियानप प्रभ मेरा दाना बीना हाथ दे राख अपने को काहू ना करते कछ कीना बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर।

आप त्याग परिय नित सरनी गुर ते पाई है एहो निदान जन्म मरण की कटी है फांसी साची दरगाह का निशान जो तुम करो सोई पल मानो मन ते छूटै सगल गुमान कहो नानक ता की सरनाई जहां का किया सगल जहान बिलावल महला पंजवां मन ताने अंतर प्रभ आही हर गुण गावत पर पकार नित तिस रसना का मूल किस नाही रहाओ कुल समूह उधरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिख्या बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही संत सेवक भगत हर ताके।

अंतरयामी सुगुण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड सम्राट नमाणिया को मान भ्रम पै बिन सगए खिन भीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधे नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बिलावल महला पंजवां दोवे थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु धूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहिया भरपूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्से कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझह चितारी कृपा निद प्रभ दीन दयाला जी जंत की करहो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजवा तन तन जोबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बकार निसपोर भया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर किस मह प्राणी गलत पया सरल परे नानक

पंजवा गोबिंद सिमर हुआ कल्याण मिटी अपाद पया सुख साचा अंतर जामी सिमरिया जान रहाउ जिसके जी तिन किए सुखाले भगत जना कौ साचा तान दास अपने की आपे राखी पै भंजन ऊपर करते मान पई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढे शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवे हर गुण है बखान बलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल कार्य सगल सवारे सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाउ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल कंठ लाए राखे जने अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल घर आए निंदक के मुख

मूला लन स्यों प्रीत बनी रहाओ तोरी ना टूटै शोरी ना छूटै ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माही बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासम दास कहियत है मोहे करो कृपा ठाकुरे अपनी बिलावल महला पंजवां हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदय धर मन ध्यान रहाऊ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जाका किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया एहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान बलावल महला पंजवां राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाउ विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवां दुपदे घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किस तेरा ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मैं आप बाहर फुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ दराऊ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवां तुम समरथा कारण करन ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराधी सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जानियो पेखियो ठौर नाही कस ठीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं कृपाल कृपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवां ऐसी कृपा मोहे करो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्श तन तूर पर हो रहाओ गुर को शब्द मेरे ही अरे बास है हर नामा मन संग धरो तत्कर पंच नवारो ठाकुर सगलो भरमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मान पावन दुबदा दूर तरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो बलावल महला पंजवां ऐसी दीखिया जन स्यो मंगा तुमरो ध्यान तुमारो रंगा तुमरी सेवा तुमारे अंगा रहाओ जन की टहल संपाखन जन स्यो उठन बैठन जन कै संगा जन चर राजमुख माथ लागी आसा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बलावल महला पंजवां ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर

जियो पिंड सब तुमरो माल, अंतर जामी पुरख स्वामी, अनबोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारू, नानक प्रभ जियो नजर निहाल, बिलावल महला पंजवा, रात सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मनमोहन, तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ, रंक तेराओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल से अग्न मह जन आप उधारी, कर अपने दे राखे हाथ, शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरत श्रम सगले नाथ, निध निधान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगले अकाथ, बुलावल महला पंजवा, अपने सेव को कबो ना बसार हो, उर लागो स्वामी प्रभ मेरे, पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा, पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तार हो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हो मैं पटल कृपा कर जार हो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास चरण कमलन की, एक दर्श स्वामी सुख स

संत दुष्ट सब हुए खया, गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत अभनासी, नानक उचर हर की जया। बलाव महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसी, करहु अनग्रहु पतत उदारन, राख स्वामी आप पुरुषे रहाओ, सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसी, औद बिहावत अधिक महावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे, सरन दुख भंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेश नाश अग खंडन, नानक जीवत दर

दया गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ न जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी की रहमत दा सदका हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा कौ नानक ते सपायो प्राप्त जिस पुरब लिखे कल। सोदर संध्या जी के दीवाना दी हाजरी भरन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आप वड़भागी हां शरदा भावना दे नाल सतगुरां दे बख्शे हुए उद्यम नाल नित नेम अनुसार गुरु जी के चरणा विच पुजे हो। सतगुरां दी अमोलक बाणी दे पाठ हुक्मनामे सरवण कीते हन। सतगुरां दी ही मेहर दा सदका नित नेम अनुसार गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा जो वेदां दे अवतार सतारा भट्टां ने श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे चरणा विच श्री अमृतसर साहब गुरु दी शोभा गुरु दी उपमा करदिआं उचारण कीती है। उस बाणी दी सहब श्री गुरु अंगद देव पातशाह दे महाराज दे सवैयां दी कथा चल रही है। आओ सारियां संगतां श्रद्धा भावना दे नाल सुन हर कथा उतारी मैल। महापुनीत भए सुख सैल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तैं तां हजरत

कवन जोर, जी अजात रंगा के नाव, सबना लिखा बुढ़ी कलाम, ए लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखा किता होए, केता दान सवाल रूप, केती दात जाने कौन कूत, किता बसाऊ एको कवाऊ, दिसते हुए लख दरियाऊ, कुदरत कवन काम विचार, वारा न जावा एक बार, जो दुद पावे साई बलिकार, तू सदा सलाम तुदरंकार। असंख जप संघ पाओ, संघ पूजा संगत बताओ, संघ ग्रंथ मुख वेद पाठू, संघ जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती संघ दातार, असंख सूर मोह बखसार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहा विचार, वर न जावा एक बार, जो तुद भाव साई पलिकार, तू सदा सलाम तुरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर राम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलबड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेश मल पख खाए, असंख निंदक सिर करह पार, नानक नीच कहे विचार, बारे न जावा एक बार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलाम तुरंकार। असंख नाव असंख थाव, गम गम संख लो, संख कहे सिर पार, ए अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण वाण, अखरा सिर संजोग बखाण, जिने लिखे तस सिर नाहे, जे फरमाए तब तब पाए, जेता कीता देता नाओ, बणनावे नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वर न जावा एक बार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलाम तुरंकार। परिया हथ पैर तन दे, पानी धोता तो उतर सो गए, मूद वलीती कपड़ होए, दे साबुन लिया तोए, परिया मत बाबा का संग।

हनुमान प्रणाम गुण गण दाम हर भर गांजु हर नर पर पांजु गण गण प्रणाम मुन मन सुलाम हर नर खंडु भर नर मंड अन पवन आश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अंश जे अंग आसन पांग उपमा पार गतमित उदार जल थल मंड देश विश पांड जल थल महंत देश विश बेअंत वन पवन आशु त्रत तरत राशु आजन बाह एक ओंकार आदि कथनीय नाद खालखंड ख्याल गुरु वर अकाल कर कर प्रणाम जय चरण नाम अंश जगात अज जिन बात अंचन जगात अनरंज बात आन टुट भंडार अंठट बार अडीठ धर्म अणबण अनंत दम हंत हर बोल मना छंद दव प्रसाद करुणालय है कालय है कल खंडन है मैं मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धरत के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड से है कल खंड से है परते पर है करुणा कर है अजप जप है तप तप है कृता कृत अमृत अमृत है अमृत अमृत करुणा कृत है कृत कृत तरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत अमृत अमृत है अजप कृत है अमृत अमृत है निर्नायक है खलकायिक है विश्वंतर है करुणालय है निर्नायक है सर्वपायिक है पव पंजन है अर्गंजन है।

सर्वात्माया तुम भाषाएं जस के जसाएं भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग दाम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञानी नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंग भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो भांक भांके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तर भंगी तर काले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय लय पैव पूजू नाथ का आस गंज पंज लख पाखो गाल दयाल लेख पेखो नाम काम घाट अनाथे परमाथे जो नी मुनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजंग बरियात छंद नमाज तुल प्रणामे समाज तुल प्रणाम से गंजलो नामे समाज तुल

सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी गरीम गुनंदा समाज तुलने वासी अजायब भूते अजायब गरीम हरियां गरियां गरीम रहे में चतर चकर वर्ती चतर चकर भूते सुयम बहु शुभंग सर्वदा सर मूते चतर चकर वर्ती चतर चकर भूते सुयम बहु शुभंग सर्वदा सर्व जगते दुकालिंग प्रणासी दयालिंग स्वरूपे सदानंद संघीय भंगंग विभूते चतर चक्र भारती चतर चक्र भुगते स्वयं पव शुभंग सर्वदा सर्व युगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भुगते सतनाम श्री वाहिगुरु जी ओ तव प्रसाद सोईये को ओंकार सतगुर प्रसाद तव प्रसाद सोईये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सदान के देख फिर कर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारिक संत समूह अनेक मति के सार ही देश को देख रहे हो मात गौ न देखित प्राणपति के श्री भगवान की बैगर बाहू बेक रति विनेक रति गे माते मदंग जर यर संग अनूप दंग सुरंग सुवारी गोट दरंग कुरंग से गुरद बौन के गौन को जात निवारी भारी पुजान के भूपली विद न्याव शीस न जात बिचारी ते पै तो काम पै भूपत अंत को नांगे पाए पुरारी जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजित गुड़ गुजान के सुंदर हिंसत राज हजारी भूत भवैख भगवान के भूपत कौन करे नहीं जात बिचारी सरी पा सरी भगवान भजे आनंद कौन के धाम सुधारी तीर्थ नान दैत मदान सो संजम नियम अनेक बसेखाए वेद पुराण कदेव कराण जमीन जवान सुबान कपेखाए पौन आहार जति अतार सबै सुब चार हजार क देखाए श्री भगवान भजे बन भूपत एक रति बिन एक न लेखाए शुद्ध स्वाहा दुरंत दवा सुसास ना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन महकारु पर्वत बंखाले न हलेंगे तोर रीन मरोर मवासन माते मदंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान पाजी बिना।

0: केळबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

विस्मादनाद विस्माद वे विस्माजी विस्माद पेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्मादनाद विप्राजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि के डग डाणी विस्माद धरती विस्माद खाने विस्माद सात लगे प्राणी विस्माद सुंदर विस्माद रुज विस्माद विस्माद भोग विस्माद शिवत विस्माद चाला

जो अपन सब किसना देखा जा गवाइया जे लोड़े चंगा अपना तरपनों ने सदाई है जे जरवाना पर हरा जरवे फिर आई है और रहना प्रिय पाई है।

जल थल दिया पुरिया लोहा आकार आकार ओए जे आखे तो तू है जाने जनाप तेरी सार नानक भक्ता पुख सलाम सतनाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला मिट्टी

हम जाते जिनकी खोदा हम तुम रखो सियाणा मोक की साल ना जाना हम तुम्हारा हम छाया हम

0: सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया
1: सतगुर मिलिया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूरख सच ना जानवी मन मुखी गुण गवाया विच दुनिया का

सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभु के सिमरन दुख जम नसै, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन ना लागे, प्रभु के सिमरन अनदिन जागै, प्रभु के सिमरन भाव ना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रेत सिद्ध नाव निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जावता पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु के सिमरन दरगह मानी, प्रभु के सिमरन होए सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला।

प्रभु के सिमर नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमर पूर्ण आसा। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माए समाय। प्रभु जी बसे साध की रचना, नानक जन का दास संदसना। प्रभु को सिमरे से परमंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते। प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरे से बेमुताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी। सिमरन दे लागे जिने आप दयाला, नानक जान की मंगे रवाला। प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरे से मुख सुहावै, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावै। प्रभु को सिमरै तिने आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल दीता। प्रभु को सिमरै तिने अंधक नेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबूना झूरै। प्रभु कै सिमरन हर गुण बाणी, प्रभु कै सिमरन सहस माणी। प्रभु कै सिमरन नै चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन।

ना जाने तुमरा अंत उचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो तो आज्ञाकारी तुमरी गात में तुम ही ज्ञानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार प्रशोड कै लागे अन सुवाए नानक ना सीजे बिन नामै पत जाय अस्पदी दस बस तूले पाछे पावै एक बस कारण बिकोट गवावै।

जय प्रसाद सुख से जसुई जय मन आठ पैरता का जस गावी जय जय प्रसाद तुझे सब को मन मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगह मान पावे नानक पास स्थिति कर जावे जय प्रसाद यारो कंचन देही लिवला वो तिसराम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सा सा सिमरो प्रभ उचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद अभूखन पैरी जय मन ती सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अस्व हस्त अस्वारी मन तिस प्रभ को कबू ना विसारी जय प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठ बैठ तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख इहां नानक तेरी रख जय प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद वो चार

बसना। जय प्रसाद हस कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फले, जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभु त्याग वरकत लागू।

ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे महलना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे धारे उपरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचे ऊंचा मन अपने सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी सृजन भय ना।

ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पैया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का

जय अदा कर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पारे, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल

कबू महा क्रोध विकराल, कबू सर्व की होत्र बाल, कबू होए बहे बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा। कबू आप कीर्त में आवे, कबू पला पला कहावे, जो प्रभ राखे देवी रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोहन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू से साधक मुगयान, कबू कीट हस तंग हुई दिया। अनक जोन पर मैं परमिया, नानू नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रभ भावे तिवर चावे, जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोय। कबू सा संग ते पावे, उस स्थान ते बोहना आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल मैं जलिया एक टाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम।

हुक्म सुख हुए तिसका नामरा कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रसोए नानक बिगन्ना लागे कोए। उसद मन मै का निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लै जियो। नैनो पेटा गुकार रंग सा संग बिनते सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाव जपी अरबिंद कर हर कर्म सुरन हर कथा दर के नानक उजल मथा बड़ पा गीते जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाए। राम नाम जो करे विचार से तनमंत करी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने तुतकी सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक दिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सूझे जिसकी जानो तृष्णा बूझे। सा संग अर जस सहत सर्व रोग दि अर्जन रहत आंदिन कीर्तन केवल बखान ग्रस्त में सोई निर्वाण की ऊपर जिस जन की आशा तिनकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक दिसे न लागे दुख। जिसको हर ब्रह्मण चित आवे सो संसु हिला नींद लावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसे डरे जैसा सात ऐसा दिसा अपने कार्य में आप समाया सूत सूद सूद कीजिया गुर प्रसाद तत् सब बूझे आ जाओ देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई असूल नै के जन्म नै किसमर है आपन चलते आप ही करे आवन जावन दृष्टिया दृष्टि आ गया धारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आ सगल में आप अनक जुगत राज थाप हो थाप अविनाशी नाही किस खंड धारण धारियो ब्रह्मंड अलख भे पुर प्रताप आवज पाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभा बान सगल संसार उदरे तिन मन दे प्रभु के सेव सगल उदारण प्रभु के सेव दू विस्तार ने आपे मेले कृपाल गुर का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सुई लागै जसनो कृपा करे वट पागे नाम जद पाए विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम कर महान जोग करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे असंग सह सुभाए होवे सोए करणे हर पछाणे सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सात ऐसा दिस्ताना जिस ते उपजे ते समाए समाए ओ सुख निदान हुन बने आए आप सो जो आप से को आप जीनो मान नानक प्रभु जाने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार जां के सिमरन उद्दी है नानक तिस बलिहार। आस्पदी टूटी गंडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माए तिसे व्यर्था कोई ना रे मन मेरे सदार जाप प्रभु अवनाशी प्रभु आपे आप आपने किया कछु ना होए जिसो प्राणी लोचै कोई तिस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जापे कर नाम रूपंत होए नाही मोह है प्रभु की जो सगल कट सो है। क्रमांता होए क्या को कर बै जा सब किस तिसका दिया दर बयात सूरा जे को कहा वह प्रभु की कला बिना कहता वह जे को होए बह दतार तिस देण हार जाने गवार। ये गुर प्रसाद उठै और रोग नानक सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर को था मैं थमन त्यो गुर का शब्द मने।

नाम के तारे पुरी आशा पवन नाम के संग उदरे सुन सरवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जा का सत आसान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सा माय समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए जिसे सब पली सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जा के हृदय प्रवेश सत नृत पूजे जय कोई नाम जबता की गत हुए आप सत किया सब सत आप जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टो करने हार अवर ना बूझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक ज्योतिष भावे सुवरतिया बिस्मान बिस्म पय बिस्मा जिन बुझिया तस्वाद प्रभ के रंग राज गुरु के बचन पदार्थ लय दाते दुख काटनार जान के संग तरे संसार जान का सेवक सो बडपागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है पी सच नानक उसी पी सच आष्टपति चरण सत सत परसनार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सवधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत सत जस सुनता पूजनार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जिन माने कारण करावन तिन मूल पछानिया जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरप होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माए समान।

लागू करे परि करणी सा शोभा पद हर की शरणियन क्यों पावी रोग ना जाए। रोग मिटे अर अवखद लाए सर्व निदान मैं अर नाम निदान जप नानक धर गए प्रवान मन पर वो द्वार के नायन दे दिसावत आ बैठाए। ता को बिगड़ ना लागे कोई जा कर दिवस अर सोए कलता थी ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भोविड से पूर्ण हुए आस भगत पाया आत्म प्रगात कर जाए बिते विनासी कौ नानक काटी जम पासी सत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सुखा चुका चावा।

हर जन मंगल का रो रहा, वितरणामी करूं ये अति, एक विद मन में पारो, गुरपुरा तिथियों वद भागी

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

शब्द ही विचार करके शब्द तो मिलने वाला उपदेश अपने हिरदे के अंदर वसाइए। जीवन जुगत गुरु शब्द अनुसार बना के जीवन सफलाउन का यतन करिए। सारे श्रोता जन ध्यान गुरु के चरणा नाल जोड़ो, सुरतिया टिकाओ, करो कृपा गद के बोलो सतनाम वाहिगुरु। शब्द के सरलेख विच सतगुरु ने कृपा की राम कली, ये राग का नाम है। महला पंजवां गुरु नानक देव जी महाराज के पंजवें स्वरूप गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह शब्द है। रुटी शब्द आया है, इस शब्द के अंदर रुत्तां का जिक्र करके वाहिगुरु परमात्मा के नाल किवें मिलाप करना है ये जुगती सानू समझाई है। जेड़े वीर सतगुरां दी पावन बाणी के दर्शन

0: परमात्मा जी मेरे को बोल बुला लै जेड़े बोल तेन पाउंदे हन ते मेनू केवल ते केवल तेरे नाम दा ही आसरा है।
1: संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत।
0: हे भाई उस वाहिगुरु परमात्मा दे प्यारियां दी शरण विच पवो ते उस वाहिगुरु परमात्मा दा सिमरन करो जेड़ा अनंत है जेड़ा बेअंत है जिस बारे आपां बड़े बाणी दे अंदर प्रमाण पढ़दे हां कि उस वाहिगुरु परमात्मा दा कोई अंत नहीं पा सकदा। कदी आखिया तू सुल्तान कहां हो मियां तेरी कवन बटाई या कदी आखिया तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहा। उस वाहिगुरु परमात्मा नु सिमरो जिहड़ा अनंत है जिसका अंत नहीं पाया जा सकता।
1: सूखे ते हरिया किया नानक जप भगवंत।
0: ओ वाहिगुरु परमात्मा सुखिया नु हरे कर देंदा है जिहड़े विकारां दे विच अपनी जिंदगी विकारां विच ला के खराब कर लेंदे ने वाहिगुरु परमात्मा उन्हां नु अपने नाम दे राही जीवन बख्शिश करदा है ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा करदे ने ऐसे भगवंत नु जपना।

0: अर्जन देव जी महाराज कृपा करते ने ऐसे प्रभु प्यारे जेरे गुरु की कृपा दे पात्र बनते हैं वो सब तो उच्चे हैं। उन्हों का मुकाबला संसारी बंदा कोई नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने नाम नू ही अपने जीवन का आधार बना लिया ते वाहिगुरु परमात्मा दे नाल ही वो जीवन दे अंदर प्यार करते हैं। नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार कहो कबीर गुलाम कर का जाए भावे मार।
1: जिन जाने आसे ही तरे से सूरे से वीर
0: जिन्हें वाहिगुरु परमात्मा नू जाने वो तर गए ते ओहो ही बहादुर हन ते ओहो ही सूरमे हन। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईत है सूरा
1: नानक तिन बलिहारण हर जप तरे तीर।
0: गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा करदे ने मैं उन्हां तो बलिहार जांदा हां जेड़े वाहिगुरु परमात्मा दा नाम जप के संसार समुंदर तो

0: परमात्मा जिहड़ा सारे गुणा दा मालिक है, जगत दा ईश है, उस दी शरण विच ओ पै के उस दे चरणा नाल जुड़े रहिंदे हन।
1: गोविंद गुण नित श्री रंग स्वामी आदको आदेश जियो।
0: ओ वाहिगुरु परमात्मा श्री रंग जिहड़ा माया दा पति है, गुणा दा खजाना है, ऐसे मालिक नूं मैं